0: समझ गया नहीं क्या
1: क्या
0: मैंने बोला था फूल
1: बोलूँ
0: और
1: मैं
0: आया
1: उसको क्या
0: अतीत है
1: ठीक
0: ना
1: है
0: वापस
1: बाबा
0: आओ
1: विक्रम
0: क्या
1: क्या है
0: ज्ञानदारा
1: तो
0: न्याय
1: ये
0: या
1: विष्णु
0: विष्णुता
1: क्या
0: है चलाएंगे इस
1: विष्णु
0: झूठा
1: क्या
0: लाओ अजंता पर करो
1: करो
0: करना है या कोई विष्णु
1: विष्णु
0: का पता नहीं बगे
1: तो
0: तुसा
1: गुस्सा
0: मोदपन्य
1: मोदपन्य
0: रामा
1: रामा
0: करुणाता
1: मोदपन्य
0: करुणाता
1: रामा
0: चतुर्थ चरण से कर
1: मोदपन्य
0: उसी और
1: मोदपन्य
0: अनासा मगर मगर दोसा यम अवर दिनास्याति निरन्य सुबगे बहाया मोदरन्य वसनोपना पूजिन अवायंगत वरत किरिन अकान कदुकर दी dengan data dari algoritma Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah virus wa itu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang dibawa piring bagi siapa yang sehingga mutlak dari ini karena kemudian memilih satu hidup bahwa dosa piring termasuk orang tidak jika meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka tidak ada harapan untuk kemudian masuk surga. Tidak ada harapannya. Sudah kekal di neraka. Ada beberapa mereka selainnya yang disebut-sebut tadi disebutkan tak lagi atau tidak di bawah ke dalam kelompok jika kelompoknya meninggal dunia sebelum kelompok jika kelompok lagi maka orangnya akan menganggap dia menghukum dia sampai habis suaranya nanti akan diangkat ke surga. Jika Allah menghendaki dengan rahmatnya kemudian dia mengurangi maka dia bisa langsung masuk. Namun jangan kemudian berhubungan dengan dosa dosa ancamannya banyak. Nabi Muhammad